मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा किता केवट चीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्याने गुर गुरहाई, कहन ना जाई तेरी तलवडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धां पुरखां कियां वडियाइयां। तुद विण सिद्धि किने ना पाईआ, करम मिलै ना ही ठाक रहाईआ। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तूं दे तुसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागे भूख। उत भूख खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचे नाए रहाऊ, साचे नाम की तिल वडियाई। आख थके कीमत नह पाई, जे सब मिल कै आखण पाहें। वड्डा ना होवे घाट ना जाए।

जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जैन देन करके की ती रात। खसम विसार ते कम जात, नानक नामे बासनात। राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सत पुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगाश।

सुरहाऊ। हर जन के बड़ भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सै, मिल संगत गुण प्रगाश। जिन हर हर

के करतरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सोतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किस की तारिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया। उड़े उड़े आवे सह कोसां, तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। सब निधान दस हठ सिधान, ठाकुर करतल धरिया, जन नानक बल बल साध बल जाइये, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख को अंकार, सत गुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हरे गम्मा अगम अपारा, सब त्यावे तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा।

सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एक पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा।

असमर्थ शास्त्र जी कर करे आखट कर्म करंता। से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जे वड़े वरना कोई। तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुदे आपे भावै सोई वरत जी तू आपे करें सो होई। तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सियार मैं डासाई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हूं पाई रहाउ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुझे आप विछोड़िया मिलाया।

न कोय। तो कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तेत सरवरडे पहिले निवासा। पाणी पावक तने किया, पंकज मो पागनि चाले। हम देखा तैं डूबियले, मन एक ना चेतस मूड मना। हार बिसरत तेरे गुण गले आ रहा हो। ना हां जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्रापत मानुख दे हुरिया। गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। अवर काज तिरक तै नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा हो। जाप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कौ नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कबियो बाज बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मान रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब है तुम कावो। आप हान दे मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परिवारा। सेवक सिख सब है करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करे। सब अरण को वा संगरे, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याओ। जोबर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारियां, चुन चुन छत्र हमारे मारियां। आप हान दे मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निवरे। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करे और अच्छा। राख लियो मैं राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बान दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो। आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारे, सकल प्रजाजन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जाबुद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब दे आपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तरसब हूँ। जेते बदन श्रेठ सब तार, आपे अपनी बूझ उचार। तुम सब ही थे रहत निरालम, जानत भेद भेदे रियालम।

देव न पावत बेदाम। ताको कृपा अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पेव।

बहोर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरे सृट दिखाए चंपव, आज जुगा स्वरूप से अंपव। आप रक्षा मेरी तुम करो, सेख्यो बार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुगत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट वरिष्ठ ट्रै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय न हरि हो, ताके ताप तन कमो हरि हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास सके न कोई।

हाँ, खड़क केत में शरण तिहारी, आपहां दे लियो बारी, सर्ब ठौर मोह सहाय, दुष्ट दुख ते लियो बचाई। सवैया

एक नमन्यो सिमरत शास्त्र वेद सब है बेद कहे हम एक न जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोय बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज वास गोविंदास तुहार राम कली महला तीजा नंद को अंकार सत गुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों गावो हरि के राम मन जनी वसाया

अंगीकार यो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरात सुआमे सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे। करता तेरे सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिफत सला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया।

धारो। वाजे पंच शब्द तेत कार सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक तह सुख हुआ तेत कार अनहद वाजे। आनंद सनोवट पागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी, संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जाने।

0: सदा कुर्बानी।
1: एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याये जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ नित आवे ताए। सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी
0: वाहेगुरु।
1: पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई। तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तना प्यारियां सियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी
0: वाहेगुरु।
1: जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी के सां सुआसां नाल निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी
0: वाहेगुरु।
1: पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी
0: वाहेगुरु।
1: प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी
0: वाहेगुरु।
1: सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान। दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बंगे जगो जोगे अटल। धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी
0: वाहेगुरु।
1: सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मादा राखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तारजियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हिन माणिया दे माण नितानिया दे तान न्योटिया दी ओट। सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है पातशाह जी आप जी दे हजूर। संध्या समय नूं मुख रखदिआं सो दर हरास साहिब जी दी पावन बाणी दे जाप कीते गए। समुची सेवा निभाउंदिआं होईआं बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा गांह तों समत बख्शिश करनी। समूह संगत दी अरदास बेनती प्रवान करनी। कदम कदम लेखे विच लाउणा आप जी दीआं बख्शियां दातां दे विचों। तिल फुल भेटावां दरते प्रवान करनियां। दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दान दी दात। अमृत वेले दा जागणा नितनेम दी दात बख्शिश करनी। मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां। काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दीआं दातां। बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना। इन्हां समयां नूं मुख रखदे आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करनी। कृपा करो पावन हुक्म दी दात बख्श के निहाल करो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने सरबादे कारज रास करने। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता वे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तबै चलाए सब सिखन

बिन देखे मरे मेरी माया, तन तन वड भाग गुर शरणी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवर ना कोई सूझे बूझे, मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिर से नकटे, तिन कस कस नक वढाया। मोह कौ जग जीवन जीवाल लै स्वामी,

हम चेरी होए लगहें गुर चरणी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। रामा मैं हर हर ना मन पाया,

रहाओ। मेरे एक खिन प्राण ना रहे बिन प्रीतम, बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन बड पा गुर चरनी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझे बूझे, मन हर जप जपों जपाया। नामहीन फिरें से नकटे, तिन घस घस नक वडाया। मोको जग जीवन जीवाल ले स्वामी, रिद अंत

मिल सतगुरु नाम ध्याया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, गुरु साहब जी की रहमत बख्शिश दे सदका सजे हुए साहबां दे आलमाना दरबार दियां हाजरियां भर रहे जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारी गुरु सवारी माणयोग साध संगत जी, गुरु साहब जी की रहमत बख्शिश दे सदका सजे हुए दीवाना दियां आप जी हाजरियां भर रहे हो, जुड़ मिल बैठे हो, वडभागे हाँ। धन्यवाद करते हाँ गुरु सवारे सत्कारयोग ढाडी जथे का, यानी गुरप्रीत सिंह जी बदनी कलां वाले ते उन्हां दे साथी जो आप जी नूं ढाडी वारां गुर इतिहास सरवण करवा रहे सन। गुर इतिहास नूं पढ़दिआं जदों आपां तवारीख नूं पढ़ते हाँ तो तवारीख के पन्नियां दे विच जिक्र मिलता है मीरी पीरी के पातशाह, मीरी पीरी के मालक छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, जिहड़े जिन्हां नूं बंदी छोड़ कहा जाता है। वैसे भाई गुरदास जी ने जो सतगुरु का जिक्र किया उन्हें कहा सतगुरु बंदी छोड़ है, गुरु बंदी छोड़ है, बंदा बंदियों नूं छुड़ाउण वाला। पर जो आप तारीख के पन्ने पढ़ते हाँ गुरु नानक साहब महाराज साहब सच्चे पातशाह जी का जीवन काल पढ़ीए, जदों सैरपुर ऐमनाबाद की धरती से बाबर चढ़ के आता है, बाबर का तीजा हल्ला, गुरु नानक साहब महाराज साहब सच्चे पातशाह दे नाल बाबर की मुलाकात होंदी है। उत्थे उस वक्त दो कौमां जिहड़ियां सन जिन्हां दा बड़े वड्डे पद्धर ते नरसंहार होया, वो एक तां हिंदू सन ते दूजे सन पठान, ते चढ़ के आउण वाले सन मुगल। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, पैदोश न देई करता है जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई करलाने तैं की दर्द ना आया, हजूर ने जिक्र किया बाणी अंदर इन्हां शब्दां दे राहीं। चढ़ के आउण वाले मुगल सन, लड़न वाले अगों पठान सन, ते जिहड़ी वड्डी जमात सी उह सी हिंदू धर्म हिंदू जात। हिंदवाणियां ते पठानियां दोवें बेपत होईयां, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज साहब सच्चे पातशाह ने दोवां दे हक विच आवाज़ बुलंद कीती, ते बाबर दी जेल विच्चों हिंदवाणियां ते पठानियां गुरु नानक साहब महाराज साहब सच्चे पातशाह ने रिहा कराईयां। क्योंकि ढाडी जत्था आप जी दे सन्मुख तारीख पढ़ के आप जी नूं सरवण करवा रहा भाई तारू सिंह दा इतिहास। भाई तारू सिंह दे जीवन विच्चों बहुतात ते आपां सिर्फ इन्ना कुछ जाणदे हां कि भाई तारू सिंह दा खोपर ला दिता गया। खोपर क्यों लथा, क्योंकि कहानी केसा की वह जथे ने आप जी को सरवण करवानी है। पर ये भाई तारू सिंह के जीवन काल में जिथे वह आए गए सिंह की सेवा करता सी भाई तारू सिंह, उ जीवन में वापरी वो वड्डी घटना, पट्टी का हाकम जाफर बेग एक गरीब मुसलमान रहीम बख्श माछी की अवला मुटियार धी नू जबरदस्ती जरवाना चुके लै जांदा है। मुसलमाना का राज है तो मुसलमाना के हक सुरक्षित नहीं, ध्यान रखो, मुसलमाना का राज हो मुसलमाना के हक सुरक्षित नहीं सन। उदों फिर वो गरीबड़ा रहीम बख्श माछी जिहड़ा मुसलमान है वह जकरिया खान की कचहरी में आता है, उत्थे जाके वह दुहाई देता है। पर सियाने कहिंदे है कि जदों गल होवे कानून की तो सामने जिहड़ी सामने जिहड़ा व्यक्ति है जिहदे नाल धक्का होया होए वह गरीब होवे, वो मजलूम होवे, वो गरीब होवे, तो फिर उदों अदालतां कानून अन्ने बोले हो जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलिया उन्हों। वापस परतदा पूले पिंड रात रुकिया भाई तारू सिंह दे घर, भाई तारू सिंह दे घर दोवें वेले लंगर चलदा, तो बिना वितकरे आउण जाण वाले रहियां नूं छकाउंदा उह। इह रहीम बख्श माशी जिहड़ा सी भाई तारू सिंह दे घर रुकिया, रात नूं वाहिगुरू वाहिगुरू कहिंदिया होया भाई तारू सिंह दी मां ने भैण ने प्रशादा पकाया, तो भाई तारू सिंह ने थाल विच परोस की उस रहीम बख्श माशी दे अगे, जो थाल रखिया ना प्रशादा छकन लगा वह मुसलमान, तो उहदियां अखां विचों मोटे मोटे अथरू जिहड़े सन तृप तृप करदे वह थाल विच डिगने शुरू हो गए। बुरकी उहने तोड़ी पर मूँह तक ना लिजा सकिया। तारू सिंह खलोता वेखता सी, मैं कहा बाबा क्यों रोना तू, रोंदा क्यों है? रहीम बख्श माशी ने सारी कहानी सुना दिती उन्हें बोल के।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਰਾਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲਿਆ, ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ਾਫਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਲ ਦਾ ਸਿੰਧਾਲੀਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਤੋ ਸੁਖਾਸਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जय माया मोह कटाई बिन गुर बुड ठोर न पावे जवला तू जीराई ऐन अस जी आंदे संभाले सुख दो पर हुकम आई करमहीन सच भीख्या मांगे नानक मिले वडाई प्रभाती मल्ला पहला मस्ट करो मोर जा कहिया अदक बको तेरी लिवरैया फूल चू तेरे दरबार नाम बिना कैसे आचार ऐसे झूठ मूठे संसार निंदक निंदे मुझे प्यारा रहाओ जिन निंदे सो ही बिर जाने गुर के शब्द दर निशाने कार नाम अंतर गत जाने जिहनो नरक रे सो ही बिर जाने मैं मैलो उजल सत सोए उत्तम आखन उचा होए मन मुख कूल महा बिख खाए गुरमोहे सुराचे नाए अंधो बोलो मुग्ध गवार हीनो नीच बुरो बरियार नीतन को तन नाम प्यार ए तन सार होर बिखिया सार उस तन निंदा शब्द विचार जो देवे तिसको जयकार तू बख्शे जात पत होए नानक कह कहा वे सोए प्रभाती मल्ला पहला खाया मैल वधाया पैंदे कर की हाण बगबवा चलाया बेनामे बिग जान बाबा ऐसा बिखम जाल मन वासिया बेबल चाग सहज प्रगासिया राओ बेखाना बिख बोलना बेकी कार कमाए जमदर बदे मारी शूट सरा से नाए जे बाया ते जायसी किया ले लै जाए मन मो मूल गवाया दरगे मिले सजाए जा कोटे सज निर्मलो गुरशब दी विचार तेनर निले जान तेनर विले जानी है जिन्हें अंतर ज्ञान मरार अजर जर नीचर चर अमर अना स्वरूप नानक जल को मीन सह तै पावे रखो प्रीत प्रभाती मल्ला पहला गीत नाद हरक चितराई रैस रंग फरमाय सकाई पहनन खाना चीत न पाई साच सहज सुख नाम बसाई क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किशु ना सखावे रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मात सत पाए पद गोविंदा कीर्त कर्मकार दे संदा अंतर रव तो राज रविंदा प्रियो प्रिय प्रिय प्रेम उतारी दीना नाथ पियो बनवारी आमदन नाम दान प्रतकारी त्रिप्त त्रंग तत बेचारी अकथो कथो अकथो कथो क्या मैं जोर पद करी कराए मोर अंतर बस चुके मैं मोर सेव के सेवी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर डीठा जिन चाख्या पूरा पद होए नानक त्रापयो तन सुखोए प्रभाती मल्ला पहला अंतर देख शब्द मन मान्या अवन रंगन हारा ऐने जिया दे संभाले तिसी सरकारा मेरा प्रभ रांग करो अदरूड़ो दीन दयाल प्रीत मन मोहन आतरस लाल सुगुड़ो रहाओ ऊपर कूप गगन पनहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रसना सो बिद जाने गुरमुख ज्ञान बेचारा असरी किरण रस कमल बिकसै सासकर सूर संभाया काल बदुस मनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रपाया अत रस रंग चलूले राती दूजा रंग रंग कोई नानक रस रसाए राते राव रिया प्रभ सोई प्रभाती मल्ला पहला बारह में रावल खप जावे चौसे में सन्यासी जोगी का पढ़िया खिर खुत है बिन शब्द गल फासी शबरते पूरे बैरागी औ हडस्त में पीख्या जाची एक पाहे लिवलागी रहाओ ब्राह्मणवाद पढ़े कर क्रिया करनी कर्म कराए बिन बूझे के सूजे नाही मन मोक्ष विछड़ दुख पाए शब्द मल ऐसे सूचा चारी साची दरगह मन अनदिन नाम रतन लिव लाग जुग जुग साच समान है सगले कर्म तन सुसंजम जप तीर शब्द वसाए नान सदगु मिले मिलाया

हसे कर जाए। रुटी कारण पूरे तार पिछाड़े धरती नाल गावन गोपी गावन कान गावन सीता राधे राम निरपन रंकार सच नाम जाका किया सत जहान सेवक सेवे।

तीर्थ नामे अर्चा पूजा अगर वास बैकार जोगी सुन त्यावन चेते अलख नाम करता।

तुम्हारी कृपा में कोई ना जाने ऊचे ते ऊचा सगल समग्री तुमरे तुम ते हो ऐसो तुमरी गात में त नानक दास तुमरी गात में त तुम ही नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी अके ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भौत जी सहाय वार श्री भौत जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास से होई सहाय अर्जन हर गोबिंदो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिठै सब दुर जाए तेग बहादुर सिमरै कार नौन दे आवे ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी और सब थाई होई सहाय दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालस सब बोलो जी वाह पंजा प्यारिया चौं सब जातियां चालिया मुगतियां अठिया जपिया तपिया शी संगा सिंगणिया जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाई दे के ढड़ कीता तिन्हां गुरमों प्यारिया सियारिया की कमाई का ध्यान तर खालस सब बोलो जी वाह जिन्हां सिंगा सिंगणिया धर्म सी दिते बांध बांध कटवाए चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए उबल दिया देगा विच उबाले गए खोपरियां लुहाइयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल ली कुरबानियां कीतियां तेरे पाणे नूं मिठा करके मन्निया असहत कहो सार दे शीदो सिकिद के सां सवासां संग नवाई त्रम निहारिया तिना समूह शी सिंगा सिंगणिया दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाह पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाह प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियाज दे ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाह सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशनान चौंकिया झंडे पुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसे जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाह सिखां दा मन नीवां मत उची मादे राखे आप अकाल पुरख अंतर जामे गुरु गरीब नवास जी पातशाह पांदे सदा सहाज दार पिता जी हो श्री ननकाणा साहिब और गुरुद्वारे जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी निमाण्या दे माण नताण्या दे तान ने उट्टियां दी ओट नयासरे ने आसरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आप दी अपार बख्श रहमत कृपा दा सदका अमृत वेले शब्द चौंकी विच आप दी इलाही बाणी दे पाठ उपरंत श्री आसा जी वाद कीर्तन होए नसचे पास सेवा करदे आ होईआं भुल्लां बख्श लैणियां पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सरबत संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणा सरबत संगतां दी हाजरी तिल फुल भेटावां रस्तां आदिक अपने दर ते प्रवान करनियां सिर ते मेहर प्रार्थना तंदुरुस्तियां बख्शणियां परिवारां विच सुख वरताउणा सरबत संगतां दे कारोबारां दी बरकतां बख्शणियां पंथ दे सिर ते मेहर प्रयात रखना सेवादारां दी सेवा थाए पौणी सेवादारां नूं इसे तरह दरकर दी सेवा करन दा उदम बल बख्शिश कर देना परिवारां विच सुख वरताउणा पंथ दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना गुर पवित्र हजूरी विच कड़ा प्रसाद देगा हाजरा दार प्रवान होवै परवान दे संद वरताउण दी आग्या बख्शो मेहर करो
ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸਹੀ ਗੁਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ।

हर जियो। सब पद तपनी ताराम, पद तपनीता हो तिन संग, जिन बदाता पाया नाम राते जी दाते, नित दे चढ़े सवाया। रिद सिद नाम निद हर जप, जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक वड भाग पाईऐ, साध साजन मीता। जिन्नी सच वणंजिया हर जीऊ,

0: हर कीर्तन लाराम। काम क्रोध ना लोभ व्यापै जो जन प्रभ स्यों राते आ, एक जाने एक मन है राम कै रंग माते आ। लग संत चरणी पड़े शरणी मन तिन उमहा, बिनवंत नानक जिन नाम पल्ले से सचे शाह। नानक सोई सिमरिय हर जियो जाके कल तारी राम। गुरमुख मनो न विसरे हर जियो करता पुरख मुरारी राम। दुख रोग ना पौ ब्यापे जिन्नी हर हर त्याया, संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया। वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी। बिनवंत नानक सिमर हर हर इस पुनी हमारी। वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी। बिनवंत नानक सिमर हर हर इस पुनी हमारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परमस्कार जो सत्संग जीओ सतगुरु जी पार बख्श रहमत कृपा हुई। अमृत लो सज दीवाना दिया हाजरियां भरिया ने नितनेम अनुसार बाणी दे पाठ उपरंत आसा की वार दे कीर्तन श्रवण कीते ने, रास प्राप्त किया उपरंत सरबत दे पले लई आप सरबत संगतां दी चढ़दी कला लई गुरु चरणा विच अरदास बेनती होई है। सतगुरु ने अमृत वेले पवित्र हुक्म नामे बख्शे जो आपा श्रद्धा नाल श्रवण कीते ने। गुरु कृपा करे आप सब नूं सतगुरु चढ़दियां कला बख्शन, सिर ते मेहर भरिया हथ रखन। बेनती है कि जो बच्चे दे कैंप ने वो शनिचरवार तक ने, सो आप जी ने सहयोग बख्शना तो अग दी लपेट विच आए बेघरां वास्ते जो तुसी मदद कर सकते जरूर करन दी कृपालता करो। और कल नूं तीन खंड पाठ आरंभ होने गए, ऐतवार नूं भोग पैणगे, परिवारां नूं बेनती दर्शन देने। सरवण करिए अज दे मुख वाक दी कथा भाई साहिब भाई गुरशरन सिंह जी पासों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। डंडौत बंदन अनक बार

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर कुरहाई, कह न जाई तेरी तरवड़े आई। सब सत